0: अब लोग सभी जन आई चुके हैं आज को मास्टर को छात्र शुरू करना होगा तो आज हमी पहले जानु पूर्व को लक्षण को बारे में देखिए कुछ सुन सो
1: पिरामिड सुखा जमीन में पानी रसौनी जमीन को पुफुल्ली धाना पाटने में पहले पाटे को सबने धाना कराई रोने ये जमीन दासी में जस्ता लक्षण पहले का लक्षण रोने
0: ला पहले का अपनी लक्षण हो जाने वाले को हमी ये तो अब पहले इस दिन को लीला को समझे को था सबसे पहले पहले जाने सोचे हम ले रहे थे

जिसमें मौसमी वायु को प्रभाव के कारण अधिकांश भूभाग में पानी पानी संभाव है। खाना पकाने गैस को आपूर्ति स्वास्थ्य बढ़ा राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष द्वारा सरकार को ध्यान भूमिका दिए सर्वोत्तम विरोध में औषधि आपूर्ति होने सकेगा। कंपनी अपना उत्पादन को बाजार में

लायक हो, बताइए उस व्यवहार का कतरे प्रदेश का उपचार लायक हो भाई और लायक हो सही पच्चीस सौ व्यवहार फेसबुक का पोस्ट मार्फत स्वास्थ्य उपचार का निम्ति हाल हामी देश का सम्पूर्ण अजय उपचार का क्रम जारी रहेको जानकारी ग्रहण गरेको थियो। समय क्रम सँगै हुँदै जारी नै छ। अतिरञ्जित गरी सार्वजनिक

संपर्क कराएंगे पांचवी नगर पालिका कृषि विकास शाखा और डेवरा कृषि सेवा केन्द्र में संपर्क करने का अनुरोध छ। तपसिल समूह अधिकरण को हक में अनुसूचित द्वीप बमोजिम समूह अधिकरण निवेदन अनुसूचित चार बमोजिम उद्दीकरण समूह अधिकरण संबंधी समूह को निर्णय प्रतिलिपि समूहदाता प्रमाण पत्र प्रतिलिपि समूह को छाप अध्यक्ष को फोटो अध्यक्ष परिवर्तन को हक में नया समूह दर्ता को हक में अनुसूचित द्वीप बमोजिम समूह अधिकरण निवेदन अनुसूचित सात बमोजिम वितरण पूर्ण रूप में अनुमोदित विद्यार्थी प्रति समूह को प्रत्येक सदस्य को नागरिक तर्फ प्रमाण पत्र को प्रतिलिपि रहने को सिफारिश समूह गठन को निर्णय सहित तीन पटक सभा को मासिक बैठक तथा बैठक के पर प्रतिलिपि वार्षिक कार्योजना र समूह को छाप र अध्यक्ष को फोटो नगरपालिका को कार्यालय।

0: खानाले बच्चा खाना तन्दुरुस्त बनाए पूरक खानासँग खाना दुई वर्षसम्म स्तनपान जारी छ।
1: रेडियो प्रभावा एफएमद्वारा साझीको जारी सन्देश
2: खाना छ महिनापछि अनि कार्य सुरु गरौँ। अन्न, केराकुडी, साग सब्जी, सब्जी कुपोषण पूरक खानाले बच्चालाई तन्दुरुस्त बनाउँछ। पूरक खाना सँगसँगै दुई वर्षसम्म स्तनपान जारी राखौँ।
1: रेडियो प्रभावा एफएमद्वारा साझीको जारी सन्देश शुभारम्भ।

सेवा केन्द्र स्थानीय अधिकार अन्तर्गत कई किलोमिटर कार्यक्रम अनुक्रमण तर्फ कार्यक्रम सन्देश

किताब हमार सन्देश कार्य विधान 7 बजे नेपाली भाषा हमार सन्देश खैराटी तब समग्र समाचार प्रक्षेत्र कार्तिक सुन्दरिया गोरी शङ्कर क्यामरा मगमी सुन्दर सुन्दरिया बिन्दु उमेर कुमार भिपिला मिठो रेडियो जय गुरु।

0: তিনি সময় কাটিয়ে হবে সব পরীক্ষার প্রস্তাব
1: पूर्वकर 75 वर्षीय अशोक पूर्वकर 75 वर्षीय दरबहादुर पूर्वकर र 71 वर्षीय रमन गर्खी पूर्वकर रहेको जनाएको छ।

सभी सामने बड़े लड़कों को छीने पर सुधारा तक सुधरा हुए पक्षी में घटना हो। कुशवाहा को राष्ट्रपति सार्वजनिक करने कचहरी और बुलडोजर सहित करीब एक दर्जन जिले सुरक्षा गाड़ियों को देखे जाए।

0: buses here on our party, but the Tat, Nagarik Swasthya Party, Hamaliki, but the Tati, Melbury Swasthya Sioma, Sabasma, Kutwati, Kelly, Yamukan Kunuswasthya Sioma, Hafsik, Talbakarasi, Kosali Hospital, Paskarimas, Kalpaka, Kana, Hartika, Lutati.
1: Hospital City in Ashiva,
0: so we say that the Takati Potas in Igarimo Potarakaza,
1: but it did behind half what this is and the Atomatism. This is a PC, Doctor Sipia, Tati, Korejo, नसा कुटु चेक जांच कैली था
0: प्रत्येक दिन नसा तथा न्यूरो सर्जरी हार्ट जोनी तथा जनरल सर्जरी पशु की सेवा नाक कान घाटी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा जांच करा जाए
1: 24 घंटा डिजिटल एक्सरे वीडियो एक्सरे ईसीजी तथा इको मुटु एक्सरे